0: र विकासको आधार सुन्दै हुनुहुन्छ सामुदायिक रेडियो बुद्ध आवाज 99.6 MHz।
1: विगत 4 दशकदेखि बुटवलमा निरन्तर सेवा दिँदै आइरहेको आले डेन्टल अब कपिल वस्तुको 4 नम्बर जितपुरमा यही श्रावण 4 गतेदेखि शुभारम्भ भई सञ्चालनमा आइरहेको छ।
0: शुभारम्भको अवसरमा विशेष छु, थप जानकारीका लागि आले डेन्टल बाढगंगा 1 जितपुर कपिल वस्तु एड्रेस बैंक नजिकै।
1: दसैँ आयो, नयाँ बाइक चढ्ने सोचमा हुनुहुन्छ? त्यसो भए यो दसैँ बनाऊ अझै विशेष।
2: बजाजले ल्याएको छ बजाज गेम अफ पावर, खेल्ने
1: हो नि, खेल्ने हो जित्ने हो।
3: यस दसैँमा बजाज मोटरसाइकल वा चेतक स्कुटर खरिद गर्नुहोस् र जित्नुहोस् 1,00,000 रुपियाँसम्मको पुरस्कार। स्मार्ट वाच र बजाजका विशेष उपहार सँगै अभियानका भाग्यशाली विजेताले रविन्द्र थाट, CR7 होर्रा अर्थात चन्दन गौतम र जितेन्द्र सिंह ऐरीसँग प्रत्यक्ष भेट्ने मौका पाउनेछन्।
1: कुनै पनि बजाज बाइक खरिदमा पाउनुहोस् रु 7,000 देखि 1,00,000 सम्मको छुट।
2: त्यसैले यो दसैँमा बजाज किन्नुहोस्, सहभागी बन्नुभयो गेम अफ पावरमा।
3: केदारनाथ अटोमोबाइल प्राली बाढगंगा 1 बैरिया तपाईँको आफ्नै बजाज सोरुम।
1: सम्पर्क नम्बर 98575243 98013-51417 र 98013-51423।
4: अरे बापरे बाप, मरी जाए मरी जाए।
5: ए साथी लोग, तो ये लोग एक सिंपल प्रॉब्लम करो तो मुझे कुछ विवेक के कहा घर झाड़ी को वो न जाओ कह रहे।
4: वो दिखाओ सर भाग जाओ, विवेक का काट नहीं टिकाओ। स्कूल के फुटबॉल देखे आए रहे और केस दुर्दशा आए पर अरे हमारे तो साफ काट ली अब मर जाए।
5: विवेक जितना बढ़ रहा साथी, अच्छा शांत हो के ढेर हिल डोल न कैसे बैठो तुमको हमारे स्वास्थ्य केंद्र पहुँचावा दी। ए पारा वहाँ घर के भैया का मोटरसाइकिल लेके आ रखा हो तो
4: हाँ विवेक कहीं खिलाते छुटाओ ये मिलावे डोलावे न कहते हम यही काफी चाहूँगी भाई बच्चा के कुछ मित्र खाते हैं खुलत है काफी यह जगह का।

0: का सहा धोए कहते सहा पेटी बटन सब खोल दी तो घड़ी उनको निकाल दी।
1: बहुत है रोशन, हम इधर विवेक के जूता और मोजा ये दूर निकाल देते हैं।
2: ढेर जैसन सांप के जसाई खतरनाक नहीं होते, समय पर उपचार कई मिलने पर विषालु सांप काट लिए व्यक्ति का बताई सका जाता है। सांप काट लिए व्यक्ति का जल्दी से जल्दी उपचार केंद्र में पहुँचाई दिए से उनके बर्बाद क्षति हुए से बचाई सका जाता है।
0: विश्वसनीय और सही जानकारी प्राप्त करे और नक्सेरे के उपचार केंद्र कहाँ है कैसे पता लगाए आधिकारिक वेबसाइट snakebitenepal.org में जाके आवश्यक जानकारी ले सका जाता है।
3: नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय एपिडेमियोलॉजी तथा रोग नियंत्रण महाशाखा र राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपाल WWF नेपालका साथै बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बद्ध सर्पदंश अनुसन्धान केन्द्र संघको सहकार्यमा रोटरी इन्टरनेशनल एवं रोटरी क्लब अफ काठमाडौँ मित्रहरूका साथसाथै विश्वभरका रोटरी फ्रेन्ड्स एवं पार्टनर क्लबहरूद्वारा जनहितका लागि प्रस्तुत सन्देश।